0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: क्या बात है, वाजी वाह, शानदार गीत। ते 905-673-3337 905-673-3337 ते गलबात हो रही है। गाना दसो जा दिल दे उत्ते, जिहड़ी शायरी दे विच दिल भी आंदा होवे ओदी गलबात। आपां दिल दी गल ही करनी अज, फ्राइडे वाली शाम ते लोंग वीकेंड है। ते कहिंदे आ दिल दे रिश्ते किस्मत नाल बणदे ने, दिल दे रिश्ते किस्मत नाल बणदे ने, नहीं ते मुलाकातां ते रोज़ हजारां नाल हुंदियां। सही गल है, दिन च सानू बंदे बहुत मिलते हैं, पर जिते दिल मिल जाण वह रिश्ते फिर वधिया निभदे भी है। कॉल दे वाल चलते हैं जी। सत श्री अकाल। हैलो।
1: हैलो, सत श्री अकाल जी।
0: जी सर, किवें हो?
1: बस वधिया सर। ए गुरदास मान जी का गाना जी, 31 दिसंबर नू आया सीगा दूरदर्शन दे उत्ते, जो पहली बार आया सी, जित तक मैनू याद हैगा भाई।
0: अच्छा, वाह जी वाह, तुहानू याद है, नवे साल दे मौके ते आया सी। कमाल दी गल है। तुहानू सन याद है, केड़े सन सी कुछ?
1: हाँ, मैनू इन्ना याद है, मैं तुहानू इह वी दस दिंदा वा, एक मिनट। मेरा ख्याल 80 या 81 दे अंदर आया सी, 80 या 81 च आया सी। उदो मैं एक छोटी शॉप ते जॉब करनी शुरू की थी।
0: अच्छा,
1: हां जी,
0: बल्ले बल्ले।
1: ओ दर्शन ते आया सी जी, है ते अगले दिन असी इस गाने उत्ते बड़ा जश्न मनाया सी इस गाने उत्ते, क्योंकि पंजाबी गाना पहली बार है गुरदास मान जी दा आया सी दूरदर्शन दे उत्ते।
0: दूरदर्शन ते 80 के 81 दे विच?
1: दूरदर्शन ते पहली बार आया सी, डबली नाल उन्हां ने बजाया सी गाना।
0: क्या बात है, वाह, देख लो यादां जुड़ियां हुंदियां किसे ना किसे गीत नाल, के नहीं? खास करके मैनूं लगदा तुसीं जी जी क्या बात है, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, क्या बात है। चलते हैं कॉल दे वाल पर, स्टूडियो का नंबर 905-673-3337 अगली कॉल 8662 जी। सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल, किवें हो जी?
2: वधिया वधिया, तुसीं सुनाओ?
0: बहुत वधिया जी।
2: भाई टेस्ला टीवी दी आई सी शहर मशहूरी।
0: पक्की गल है?
2: हां जी पक्की गल
0: है। टेस्ला?
2: हां टेस्ला,
0: नहीं टेस्ला नहीं, सॉरी टेक्सला।
2: टेक्सला, हां जी टेक्सला।
0: ओ मैं देखो किन्ना पुराना है।

0: कागज हर जिन नाम आधारे ताप उतारे सतगुरु पूरे कृपा का रहाओ सदा आनंद करो मेरे प्यारे हर गोविंद गुरु राखिया वड्डी वड्याई नानक करती साध भगत सत पाखिया सूरत महला भय कृपा स्वामी मेरे तित साचे दरबार सतगुरु दास
1: Sunglasses, Simply Glasses, to visit KGA Alpha Optical, Jacuzzi and Williams Parkway, Mamajod, Golden Gate Plaza, Brampton. Alpha Optical, any age, any stage, Jiha, on ki specials dekhne ke liye Alpha Optical.ca pe jaiye, aapko check karwane ke liye appointment ke liye 905-456-2733, Alpha Optical, your vision is your business.
0: Karan karan samrat so bhai, satya sachi soye, nanak prabhu te aaiye, paai man tan si tal hoye. Sat gur pura taap gaya, apni kirpa dhari, paath raha.

अपेम तत्पुनीत पई गुन गाए दुर्द गया हर नाम ते आए रहा सबनी थाई रव्या पाद जुगाद जाता वड प्रताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुर तूठे।

साथ जना होए कृपा ना बिकसे सब परवारिया कर सतुरे आप सवारिया बड़ी यार जा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाओ वन त्रिन त्रिभुवन हरिया होए सगले जिया साधारिया मन चे नानक पल पाए पूरन इच पुजारिया बिलावल महला पंजवा रोग गया प्रभु आप दवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ राज राज भोजन खावा मेरे भाई अमृत नाम जिद माहे ते आई नानक गुर पूरे सरनाई जिन अपने नाम

गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं।

0: अच्छा मानो द्वापर वेडिंग स्टोर,
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिंदूरी तक का सारा

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यार का स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम है, लॉन्ग वीकेंड है। अभी आप जानते हो कि आपके लिए अभी अगस्त का महीना गया है, तो अभी साल ऐसे हाथ से कैसे सरकता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो बहुत सारी अचीवमेंट कर ली है। अभी तो कुछ महीने, 4-5 महीने बाकी है, फिर भी आपने बहुत सारी अपनी जो योजनाएं थी उनको पूरा कर लिया है और आपने उनको पूरा फुलफिल कर लिया है। ये आप पूरी तरह से समझते हो, जानते हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और उसको बढ़िया तरीके से अपने वक्त को आप आगे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये जिंदगी में सबसे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सभी शहरों में बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं सिविक हॉलीडे की। फायरवर्क्स तो होगा ही होगा ना, ये तो आपको मालूम ही है कि फायरवर्क्स होने वाला है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और जिंदगी का लुत्फ उठाइएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपका मन चाहे, तो उसी तरीके से आप तो इंजॉय कीजिएगा अपना वक्त जो है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीते हो, अपने टर्म्स में जीते हो, उसका जो जीने का मजा है ना, वो अलग ही है। और उसमें आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने टाइम की वैल्यू की, दूसरों के टाइम की वैल्यू की और आप जिंदगी को एक बढ़िया तरीके से जिए हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से जिए हो और आगे बढ़ने के लिए जिए हो और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चले हो। दूसरों को साथ लेके आगे चलता है कोई कोई, अपने लिए तो सब भागते हैं। जो दूसरों को साथ लेके चलता है उसको उसकी अपना ही अलग ही, उनको ही मालूम है जो ऐसा करते हैं और उनको ही मालूम है कि उसका क्या मजा है। तो आइए इन्हीं विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और आपको बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया लेटेस्ट गैजेट चाहिए किचन के लिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर आपको आपके लिए बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा ही सामान आपको कहाँ पे मिलता है? जी हाँ, आपको ये सारा सामान आपको मिलता है, जी हाँ। तो ये जो जगह है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल पे है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए अभी राखी आने वाली है हमारी बहनों के लिए, तो अगर आपने किसी तरह की भी राखी की, किसी तरह की भी आपको सामान लेना है तो पूजा हट में, तो अब टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अपनी बहन को टीवी लेके देना चाहते हो, गिफ्ट लेके देना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर आप कॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक पर कॉल कर सकते हो। अब जब आपने घर लेना है तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खंड को 519-500-46-1260 किचनर वाटरलू गॉल्फ में। अगर आपने कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खंड को। जी हाँ, नसीब खंड आपको
बहुत बढ़िया डील लेके देंगे। और जानकारी के लिए 519-546-1260 आप आपने घर ले लिया, आपको मूव तो होना ही है, तो एचके मूवर्स आपकी पूरे कनाडा भर में मदद करने की कोशिश मदद करते हैं, कनाडा भर में आपको मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स। एचके मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो तो आप 416-524-8004 पर आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हो। अगर आपने फूड ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है और न्यूली रेनोवेटेड है, आप उनको कॉल कीजिएगा 905-814-1703। ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, आपके लिए मौजूद है मिसिसागा में ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे। तो अब आपके लिए गाना तो एक बढ़िया सा बनता ही है ना, तो जरूर गाना सुनाएंगे। पर आपको बता दें कि अगर आपने आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको क्लीजन का काम करवाना है तो आपके लिए मास्टर क्लीजन डिपो लंदन में मौजूद है गोर रोड पे, तो आप उनको कॉल कीजिएगा और जानकारी के लिए, और क्लीजन का काम बहुत बढ़िया करके देंगे। तो ये है आपके लिए मास्टर क्लीजन डिपो, तो आप masterclusiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं लता जी का। लता जी तो हमेशा के लिए forever है, तो let's go to this beautiful लता जी song। पंजाबी के गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, आपको उनका पंजाबी का गीत भी जरूर तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे, पर पहले आपको ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना

हाँ जी, आप सुन रहे हो प्रोग्राम इंफॉर्मेंटल है, पर आई जस्ट वांट टू हैव थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए, तो आइए आपको ये रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आप वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो बताना, जिनके बर्थडेज हैं, बहुत शादियां बहुत होती हैं इस वीकेंड में, तो अगर आपके शादी हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है झारखंड सर में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा प्रोग्राम घंटा, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो चलो अभी आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ, मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे का होने की बात होती है, इसी में बस गाने में यही बताया गया है, बड़ा रोमांटिक सा है। यस यस, वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है तो सुनते हैं।

या एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मीरा शर्मा। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, लोटस टीवी आपको चाहिए, या फिर आपको आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, किचन गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। topchoiceelectronics.com पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देख सकते हो। फिर आपने अगर ऑर्डर बुक करना हो तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए मूविंग की पूरी सेवाएं आपको एचके मूवर्स देते हैं कनाडा भर में। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं आपके सामान को हाजिर से पहुंचाते हैं। आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4164-6704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है अब, और बहुत सालों का उनका तजर्बा है। आपका कोलिजन आपकी कार वैन ट्रक को नए जैसा बना देंगे। आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको मूविंग करनी है तो आप एचके मूवर 416-524-4704 पर कॉल कर सकते हो। और लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा आपको। और राखियाँ लेनी है आपको, इंडिया सजावटन पूजा हाट से जाइएगा। तो लीजिए, सुनिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: आत्मा की आवाज के बारे में जब बात की जाए तो हम लोग ज्यादातर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, वही अंदर जो आपके भगवान बैठा है उसी की आवाज होती है वो। तो अगर तो आप अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो फिर आप दुनिया को भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो उसमें बहुत ही मजा है। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो आइए, इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने श्रद्धा पला है, वंडरफुल डे। और रात को हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो मैंने एक पोईम लिखनी शुरू की है, तो अभी मैंने पहली दो लाइनें लिखी हैं, तो आपको ये साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी पोईम अभी मुझे लिखनी है, मैं पोईम्स लिखती हूँ। तो मैंने जो पहली दो लाइनें लिखी हैं कि आई लाइक टू डांस व्हेन आई गेट ए चांस, आई डांस विद वुल्व्स, लायंस, लायनेसेस एंड ऑफ कोर्स पिग्स, यस पिग्स, आई डांस विद पिग्स।
1: टॉयलेट जरूर वरतांगे, इसलिए हुणे कॉल करो, असीं वादा करदे हां कि तुहाडे घर नूं अग नहीं लगेगी। शायद
2: अपने परिवार दी रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो अते यकीनी बनाओ कि ओह ईएसए परमिट हासिल करन। होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वल्लों एक सुनेहा।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

मुकंद मुकंद जपहु संसार बिन मुकंद तन होए आहार सोए मुकंद मुकत का दाता

बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को

0: दादा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता वाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना, वापस नहीं जाना।

0: तीन बच्चे पैदा करे और सिख कौम दे विच एक जुटता दी उन्होंने अपील की कि एक जुटता की जरूरत है। नौजवानों नूं कहा कि दाड़ी केस धारण किए जाण। तीन बच्चों की जिहड़ी अपील की पहला भी कई बार इहो जिहियां गल्लां होईआं क्योंकि अज के युग दे विच चाहे सिख चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे ईसाई बच्चे पैदा करन दा ढंग बड़ा बदल गया है। पहला कुछ होर हुंदियां सी स्थितियां अज एक बच्चे नूं भी लोग कहिंदे कि काफ़ी है। हुण जथेदार साहब ने समाजिक हालातां दे विचों खैर कल्ले समाजिक नहीं उन्होंने धार्मिक गल भी कीती है धार्मिक गिनती वधदी वधे पापकी सिखां दी गिनती च इजाफा हो गए उस एंगल तो उन्होंने यह गल कही है कि हर सिख जोड़ा जिहड़ा तीन बच्चे पैदा करे। सो जथेदार साहब ने इत्थे हुक्म कर दित्ते आ बाकी भाई सिख संगत किन्ना कु प्रवान करदी है समां दस्से
1: जी। रमेश जी ते जी इस दे नाल ही असी जांदे जांदे थानू याद करवा दिए जी लोंग वीकेंड ते अपलायंस जंक्शन तुसी जरूर पहुंचना है रिवरमोंड प्लाजा मिसीसागा ते स्टील स्कूल या फिर एयरपोर्ट ते क्लार्क कोल नवी लोकेशन ते तां जो कि अच्छियां डील्स थानू जरूर मिल सकन। सो जाण दा समा हो चला है। मैं सारिया का बहुत सारा धन्नवाद करदी हाँ जो जो होल्ड ते भी इस वेले कॉलां ने थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जी तुसी समा सानू दिता। रमेश जी थोड़ा भी बहुत बहुत धन्नवाद ते अज दा दिन सारिया नू बहुत बहुत मुबारक जी थोड़ा दिन सफल रहे। मैनू रुपिंदर कौर नू दिओ इत्थे ही इजाजत हसते वसते रहना सत श्री अकाल।

रहमत तेरी, नाम तेरा, कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे, एहसास भी तेरा, एक तो ही सतगुरु मेरा। मैं हाँ संतोष कौर, ते तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही अपने शो रेडियो आवाज़ च।

0: Center Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: रियल एस्टेट दी दुनिया बिचाओ अपने सुपने अनु सच कर वखाओ फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ
2: रियल एस्टेट दियां बारीकियां सीखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ
1: फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने
2: आज ही कॉल करो फेयर डील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नू
1: 905-671-2000
2: फेयर डील नाल हाथ मिलाओ अपने सुपने अनु सच कर विखाओ
3: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी हां ब्रो फूड वाज अमेजिंग फ्रेश हॉट ते फुल टेस्ट वाला गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए सर्विस भी टॉप नॉच सी टाइम ते डिलीवरी प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी करीज रोटी राइस एवरीथिंग वाज परफेक्ट ऑनेस्टली असी ता हुन हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.

और रेडियो वाज विच आप सब दा हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अमदीप सिंह मैरीपाल एक बार फिर तो मुखातब हाँ, और हमेशा इतना कि एक सुरमई सवेर जिंदगी दे बराग वर्गी, अलादीन दे चिराग वर्गी, जिमें संघने बोड़ा की छां, जिमें मूँह विच डुबी मां, ठंड वर्गी, खंड वर्गी, दोस्ती दे सच वर्गी, खुशी ना भरे गच वर्गी, मेरी सत श्री अकाल एक बार फिर तो प्रवान करूँगे। रेडियो वाज दे विच सारे सुनना शामिल हो, चलते हो सफर दे वल जो बहुत खूबसूरत, पर सफर उदों ही वधिया लगता है जो कुछ बहुत वधिया होवे। बहुत वधिया, बहुत वधिया, थोनों कुछ देन लग गया, सुनते रहो।

0: Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 90545-12600.
1: मेरी पहली पसंद।
2: I love it।
3: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती।
1: हम सबकी पसंद।
4: Radio Awaaz।
1: Every morning from Monday to Friday, 9 to 10 and Saturday, 10 to 1 on AM 530. Non-stop calls, non-stop talks. Promote your business with us. Contact 416-518-3200.
5: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। इतनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
6: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
9: रेडियो आवाज,
10: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200।

0: चले फंक्शन डालते हैं रेडियो सुन रहे हो और ब्रिजी सरना ब्रिजी कैसे आप
1: चर्दी कला जी
0: चर्दी कला
1: ऑलवेज
0: ऑलवेज ब्रिजी के साथ सुल्तान जी भी आ गए हैं और ब्रिजी सबसे पहले आपका मैसेज डिलीवर कर दें आप बिजी होते हैं
1: जी
0: सारा दिल ही के किसी दे भी कोई दर्द है
1: जी
0: ते ब्रिजी आज साउथ इंडियन फिल्मों के हीरोज वांगो बाकी है काली अंकल कहीं भैया ने
2: धोते इनो की कहीं
1: लुंगी डांस
0: लुंगी डांस
2: ब्लैक लुंगी
0: ब्लैक
2: टी-शर्ट
0: नाल कड़ा जड़ा इनां दे पाया हुंदा अलग तरह दा
1: ब्लैक
0: सो आज पूरा हीरो बन के आया है सो ब्रिजी को पहुंचना तुसी किसी ने भी अपनी बॉडी नु मेंटेन रखना बॉडी दे विच ब्लड प्रेशर तुहाडे सोजिश तुहाडे पेन है कि किसी दे या तुसी प्रॉपरली चल नहीं सकते टेंशन है कि कोई पैसे दिया था ना जायो ब्रिजी को पैसे पैसे नहीं दे सकता सुकून दे सकता
2: बिल्कुल
0: संतोष को सुकून भी है सबर भी है पर उसकी बात यह लाइफ च नहीं है टैटू तो है संतोष सही है कि नहीं
2: बिल्कुल
0: सो
1: मुरिवन्ना महानारायण तैलम क्षीरबल और कर्पूरादि बहुत तेल है
0: महानारायण किसके लिए यूज होता है
1: पेन के लिए जी
0: तो कर्पूरादि
1: कर्पूरादि भी पेन है फिर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है कर्पूरादि इज मोस्टली फॉर द कोई कुछ कफ ऐसे कुछ है तो
0: कर्पूरादि
1: कर्पूरादि करें
0: कर्पूरादि हाँ सो तो मरवन्ना दस्तो मेरा वो
1: मरवन्ना जी सब पेन और नरिश करने के लिए स्किन नरिश करने के लिए बहुत अच्छा है
0: ठीक है सो कौन कौन से आप तरीके से करते हैं
1: जी हमारे साथ आयुर्वेदिक अभ्यंगम पोटली थेरेपी
0: ऑल काइंड्स होता सर पे तेल डाल
1: पूरा बॉडी मालिश करने यह है अभ्यंगम उसका संस्कृत
0: वर्ड नौ से लेके सर के बाल तक
1: पूरा पूरा बॉडी में
0: तो शिरोधारा
1: शिरोधारा सिर में तेल डालेंगे जी थर्ड आई थेरेपी
0: थर्ड आई
1: कंटिन्यूस ड्रिपिंग द ऑयल ऑन द फोरहेड
0: खुशबू ऑयल स्ट्रॉन्ग बहुत ने उथे तुम जाके ए लगना की तमिलनाडु पहुंच गए या केरला पहुंच गए
2: जी बिल्कुल
0: सो म्यूजिक हो जाएगा अगरबत्ती भी हो जी है अंदर तेल की खुशबू भी हो जी होती है प्रॉपरली क्लीनअप के नाल टॉवल सर्विस देंगे ने फुल टॉवल सर्विस का मतलब एक टॉवल एक बार यूज होंगे सो तुम बड़ी रीजनेबल कीमत से डॉलर $55 पे कर दौ $55 पे करके जरा अपनी मालिश करवानी है ब्रिजी नंबर बोल दो
1: 647-649-1369
0: 647 अपॉइंटमेंट कितनी है थोड़ी सी यहाँ
1: लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है जी वीकेंड आल्सो अवेलेबल या
0: वीकेंड पे है या लॉन्ग वीकेंड है
1: लॉन्ग वीकेंड
0: मंडे का भी है
1: मंडे का भी है जी
0: ठीक है तुसी मेल और फीमेल दोनों जा सकते हो हस्बैंड एंड वाइफ
1: या
0: 647-649-1369
1: 647-649-1369
0: थैंक यू सो मच ब्रिजी 647-649-1369 कॉल करनी है।

सो 9 बाबा थोड़े थोड़े लाइन खुले ने ते दो लाइन बिजी ने, जल्दी तो पहला कॉल कर लो, जल्दी तो पहला नाम डेट ऑफ बर्थ ते नाल फिर थोड़ियां दो आदतां, एक तुसी की चेंज कर सकते लाइफ च, एक आदत ऐसी दसूंगा जिन्हें थोड़ा जिंदगी पिछे नूं खिंचया पिया ते कसूर लोगों का, किसी ने थोड़ा आ करता, किसी ने थोड़ा ओ करता, किसी ने ई करता, ना तो मास्क नूं कदे कंप्लेंट होंदी है किसी ने मेरे नाल माड़ा किया, ना अंबानिया नूं कंप्लेंट होंदी है किसी ने साडे नाल माड़ा किया, ना किसी होर अमीर बंदे नूं, गरीबां दी कंप्लेंट बहुत होंदी है, उन्हें माड़ा करता, इन्हें माड़ा करता, तां मैं इत्थे रह गया, नहीं तां मैं टुट पैणे ने जलेबी मारी अख विच तेल पै गया।

0: ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
1: ਫਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551।
2: स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल, गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है।
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस।

0: कर लगाओ।
1: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला तो ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही क्या सी, सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरो बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं तां कहना घर ही वेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो, टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करदे आ। सस्ते दा दावा तां नहीं पर कम दी गारंटी।

0: Artist Drive, Unit 9, Mississauga.
1: Hi, चूहा ते कॉकरोच भी सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच ते चूहे ओ हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही क्या सी, सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरो बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट हुई करी जांदे आ।
2: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नू कड्डो, टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो। जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं, सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट।

0: कैनेडा सरकार जमानत अति सजा दे कानूनों विच सख्ती ल्या रही है। हिंसक अति बार बार अपराध करन वालियां नू भाईचारे तो दूर रखन लई सिस्टम विच सुधार तां जो तुसी घर विच सुरक्षित रहो। canada.ca/sarakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
1: This is AM 530, CHLO AM, an Evanoff communication station, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.

नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वापस आ गए जी, वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो, वीकेंड दे विच रेडियो अंदाज नू शामिल कर रहे हो, बहुत शुक्रिया। रेडियो अंदाज दे विच मैं थोड़ी होस्ट परम हाजिर हो चुकी हाँ थोड़े लिए। गलबात करांगे जी अज 7:45 तक रेडियो अंदाज दे विच सारे सारे लिसनर्स नू सारे परिवारां नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल, बहुत सारा प्यार ते सारा सत्कार, वेलकम जी आयो, खुश आमदीद एंड स्वागतम।

समीन चलते हैं कहकशां के उस दौर में, सुखनवरी के उस पार, जिसे बहुत ही उम्दा आवाज के साथ नवाजा है जगजीत सिंह ने। इस गजल से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में मोहब्बत ना हो उसका एहतराम नहीं होता, जो दिल को ठेस पहुंचाए ना हो इंसानियत जिसमें, वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। तो शायर उसे कहते हैं जो अपनी कलम की एक बूंद से समंदर लिख देता है। तो आइए कुछ ऐसी ही गजल में आपको डुबोने के लिए एक बहुत ही उम्दा आवाज, जिसे जग को जीतने वाली आवाज कहते हैं, जगजीत सिंह की आवाज।